0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग
1: की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र
2: इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन

0: और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक

0: दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Hindi Divas is being celebrated across the

0: సమయం 8 గంటలు కావస్తోంది. కొద్ది క్షణాల్లో వార్త ప్రసారం ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ ప్రభాత్ కే సాథ్ మే ముకేష్ కుమార్ బల్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी. गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है. आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की. भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया. धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा. और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है. 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है. वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है. श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा.
2: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है. हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा.
1: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति

0: बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35 ए हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलाह

0: सलाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडुमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मेक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शैफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्षदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश

0: लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमेरिका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across.
3: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
2: The leaders who attended the summit included Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, Iranian President Masoud Pezeshkian and Abu Dhabi's Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, Vietnamese Prime Minister Lee Min Hung, Indonesian President Prabowo Subianto, Egypt's President Abdel Fattah Al-Sisi, President of the Philippines Ferdinand R. Marcos Jr., Uganda's Vice President Jessica Alupo, besides others, also attended the summit. Union Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA-ruled states before 2029.
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड
5: वी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सेवरल स्टेट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल इंप्लीमेंट द यूसीसी इन ऑल 21 स्टेट्स गवर्न बाय द बीजेपी लेड एनडीए बिफोर 2019 द भारतीय न्याय संहिता

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 11:03. ఇప్పుడు హిందీ పాఠంలో కృత్రిమ మేధస్సు ఏఐ హిందీ భాష ప్రచార ప్రసారాల అంశం గురించి రాహుల్ వైద్ గారితో పరిచయం. పరిచయకర్త జయదీప్.
1: मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है. प्रस्तुत है हमारा हिंदी कार्यक्रम. मैं हूँ जयदीप. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्तमान समय से जुड़े विषय पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हिंदी का प्रचार प्रसार. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता एआई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. शिक्षा, संचार, लेखन और अनुवाद जैसे अनेक क्षेत्रों में एआई का उपयोग हो रहा है. तो सवाल ये है कि एआई हिंदी को आगे बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हो सकती है और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं. इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं रवि वैद जी, जो एक लेखक और कवि हैं. रवि वैद जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद जयदीप जी.
1: रवि जी, सबसे पहले बताइए 21वीं सदी को तकनीकी क्रांति की सदी क्यों कहा जाता है?
2: देखिए जयदीप जी, 21वीं सदी को तकनीकी क्रांति की सदी कहना उचित है क्योंकि इस समय विज्ञान और तकनीक ने मानव के जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं. इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक के संचार के साधनों को बहुत सरल और तेज बना दिया है. आज व्यक्ति कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है तथा

0: घर बैठे अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
1: जी
0: देखिए कि तकनीकी विकास का प्रभाव केवल संचार तक सीमित नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, बैंकिंग, पत्रकारिता, मनोरंजन, प्रशासन और साहित्य जैसे क्षेत्रों में भी तकनीक का व्यापक उपयोग हो रहा है।
1: जी सर
0: अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात जिसे कृत्रिम बुद्धिमता भी कहते हैं, इस तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण चरण बन चुकी है। एआई की सहायता से मशीनें मनुष्य की भाषा को समझने

0: मैकेनिज्म से शुरू हुई क्रांति अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है।
1: जी
0: इसलिए 21वीं सदी को तकनीकी क्रांति की सदी कहना बिल्कुल उचित है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रवि जी। आज तकनीक ने हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसी तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसी एआई की भूमिका पर हम आगे चर्चा करेंगे। रवि जी, एआई हिंदी के प्रचार प्रसार में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है?
0: देखिए, आपके जो हैं श्रोतागण, आपके बहुत लाभान्वित होंगे इस परिचर्चा से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माध्यम बन सकती है।
1: जी
0: पहले हिंदी के प्रचार प्रसार का माध्यम क्या होता था? पुस्तकें, समाचार पत्र,
1: जी
0: पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन
1: जी
0: और इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हिंदी को डिजिटल मंच प्रदान किया।
1: जी हाँ
0: अब एआई इस प्रक्रिया को और अधिक व्यापक बना सकती है। एआई की सहायता से हिंदी में लेख, कहानी, कविता, शैक्षणिक सामग्री, समाचार संबंधी सामग्री और डिजिटल सामग्री तैयार करने में सहायता मिल सकती है।
1: जी
0: कोई व्यक्ति हिंदी में प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त कर सकता है
1: जी हाँ
0: और कठिन विषयों को भी सरल हिंदी में समझ सकता है।
1: वो भी बहुत कम समय में।
0: बिल्कुल, आपने
1: जी
0: यहां प्रश्न पूछा और तुरंत आपको उत्तर प्राप्त हो जाता है
1: जी
0: वहां
1: जी
0: से। तो देखिए कितनी ये तीव्र गति से
1: जी हाँ
0: टेक्नोलॉजी बदल रही है और कितना मनुष्य का जीवन सरल होता जा रहा है इससे।
1: जी एकदम सही कहा आपने।
0: अब आगे देखिए कि एआई की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुवाद के क्षेत्र में हो सकती है। दुनिया में उपलब्ध अंग्रेजी और अन्य भाषाओं की महत्वपूर्ण सामग्री को हिंदी में उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री को अन्य भाषाओं में अनुवाद करके विश्व के लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता
1: जी
0: है। इसके अतिरिक्त एआई आधारित वॉइस टेक्नोलॉजी हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए डिजिटल सेवाओं को आधार सरल बना सकती है।
1: जी सर बिल्कुल
0: व्यक्ति बोलकर जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी बात को लिखित रूप में परिवर्तित भी कर सकता है।
1: जी
0: इस प्रकार एआई हिंदी को केवल साहित्य और बातचीत की भाषा तक सीमित न रखकर ज्ञान, शिक्षा, तकनीक और डिजिटल संवाद की सशक्त भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा
1: जी
0: सकती है।
1: बिल्कुल। एआई के माध्यम से हिंदी में सामग्री तैयारी करना और अन्य भाषाओं की जानकारी को हिंदी में उपलब्ध करना काफी सरल हो सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। रवि जी, एआई भाषा की बाधा को कम करके ज्ञान को हिंदी भाषी लोगों तक किस प्रकार पहुंचा सकती है?
0: जयदीप जी, देखिए कि ये ज्ञान प्राप्त करने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी
0: विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, अर्थशास्त्र और उच्च शिक्षा से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, विश्व का जितना भी ज्ञान है, विज्ञान तकरीबन अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में, जैसे चीन में चीनी भाषा में है, जापान में जापानी भाषा में है,
1: जी
0: लेकिन यही ज्ञान जो है हिंदी भाषा में हमें उपलब्ध नहीं है। अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान न रखने वाले हिंदी भाषी लोगों के लिए सामग्री को समझना कठिन हो सकता है।
1: जी
0: एआई इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।
1: जी
0: एआई आधारित अनुवाद तकनीक के माध्यम से अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है।
1: जी
0: इतना ही
1: सर
0: नहीं, एआई कठिन और तकनीकी विषयों को सरल हिंदी में समझाने में भी सहायता कर सकती है।
1: जी बिल्कुल
0: उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी विद्यार्थी को किसी वैज्ञानिक विषय की अंग्रेजी सामग्री कठिन लगती है, तो वह एआई की सहायता से उसे सरल हिंदी में समझ सकता है।
1: जी सर
0: अब सरकारी दस्तावेज, शैक्षणिक सामग्री, तकनीकी निर्देशों और स्वास्थ्य संबंधी सामान्य जानकारी को भी हिंदी में अधिक आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: इससे अनेक लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है और अपनी मातृभाषा या परिचित भाषा में भी सीखना सहज हो जाता है एकदम। इस प्रकार एआई ज्ञान को कुछ विशेष भाषाओं तक तो सीमित रखने के बजाय अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकती है।
1: जी सर बिल्कुल
0: इससे हिंदी केवल भावनाओं और साहित्य की भाषा न रहकर ज्ञान और सूचना की भाषा भी बन सकती है।
1: यानी कि हम उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी,
1: बिल्कुल सर, यानी एआई कठिन जानकारी को सरल हिंदी में समझाने में सहायता कर सकती है। इसका एक बड़ा लाभ शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है। रवि जी, हिंदी के प्रचार प्रसार में एआई आधारित अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है?
0: देखिए, ये हिंदी के प्रचार प्रसार में अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: किसी भाषा को विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस भाषा में उपलब्ध साहित्य और ज्ञान अन्य भाषाओं के लोगों तक भी पहुंचे।
1: जी
0: इसी प्रकार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध ज्ञान हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाना भी आवश्यक है।
1: जी सर
0: एआई आधारित अनुवाद इस कार्य को पहले की तुलना में अधिक तेज

0: और सुविधाजनक बना सकता है। विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, इन सब क्षेत्रों और शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों, शोध पत्रों, लेखों को हिंदी में उपलब्ध कराया जा सकता है।
1: जी
0: इससे हिंदी भाषी विद्यार्थी और सामान्य पाठक दुनिया के ज्ञान का लाभ अपनी भाषा में उठा सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति की रचनाओं का अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है।
1: जी सर,
0: इससे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि, साहित्य और भारतीय विचार विश्व के अनेक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं।
1: जी सर,
0: इस प्रकार AI आधारित अनुवाद दो दिशाओं में कार्य करता है। एक तो दुनिया का ज्ञान हिंदी तक पहुंचाता है और दूसरा हिंदी का साहित्य जो हमारा है, हमारा साहित्य, संस्कृति और विचार दुनिया तक
1: दुनिया तक।
0: पहुंचाता है।
1: जी,
0: हालांकि ये देखिए, अनुवाद करते समय केवल शब्दों का अनुवाद पर्याप्त नहीं होता, भाषा के सांस्कृतिक, भावनात्मक और संदर्भगत अर्थ को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए AI के साथ मानवीय संपादन और विशेषज्ञता का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहेगा।
1: जी सर, बिल्कुल। अनुवाद के माध्यम से हिंदी भाषी लोग दुनिया के ज्ञान को अपनी भाषा में समझ सकते हैं और हिंदी का साहित्य भी दुनिया के अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: रवि जी, विद्यार्थियों के लिए AI हिंदी में सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार सरल बना सकती है?
0: देखिए, शिक्षा हिंदी के प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
1: जी
0: यदि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपनी समझ की भाषा में उपलब्ध हो तो वे विषय को अधिक आसानी और गहराई से समझ सकते हैं।
1: जी
0: यानी विद्यार्थी को अगर शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है,
1: जी
0: सरल हो जाता है। AI इस दिशा में हिंदी को एक आधुनिक शिक्षण भाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: और AI की सहायता से विद्यार्थी हिंदी में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: यदि किसी विद्यार्थी को कोई कठिन विषय समझ में नहीं आ रहा है तो उसे AI उसे सरल भाषा में समझा सकती है और आवश्यकता के अनुसार उदाहरण भी दे सकती है।
1: जी
0: AI के माध्यम से हिंदी में डिजिटल पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री और संवादात्मक शिक्षण प्रणाली विकसित की जा सकती है।
1: जी
0: इससे विद्यार्थी केवल किताबों पर निर्भर न रहकर डिजिटल माध्यम से भी सीख सकते हैं।
1: जी सर,
0: और देखिए, इसका विशेष लाभ जो है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के विद्यार्थियों को अधिक होगा, जहां उच्च स्तर की शैक्षणिक सामग्री और विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सीमित हो सकती है।
1: जी
0: हिंदी में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री उपलब्ध होने से शिक्षा अधिक लोगों तक पहुंच सकती
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल।
0: भविष्य में विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सामग्री भी हिंदी में अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकती है।
1: जी बिल्कुल सर।
0: इससे हिंदी केवल साहित्य पढ़ने की भाषा ना रहकर आधुनिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण की भाषा भी बन सकती है।
1: जी सर, बिल्कुल। यानी ये विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। यदि कोई विषय कठिन है तो AI उसे सरल हिंदी में समझाने में सहायता कर सकती है। रवि जी, AI लेखकों और रचनाकारों के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है?
0: हाँ, देखिए जयदीप जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है साहित्यकारों और रचनाकारों के लिए एक बहुत उपयोगी सहायक उपकरण बन सकती है।
1: जी
0: साहित्य सृजन में शोध, जानकारी एकत्र करना, संपादन, भाषा संबंधी सुधार, अनुवाद और डिजिटल प्रस्तुति जैसे अनेक कार्य होते हैं। AI
1: जी
0: इन सब कार्यों में रचनाकार की सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसी विषय पर लेख या कहानी लिखने से पहले आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, विभिन्न स्रोतों से विचारों को व्यवस्थित करने में और भाषा को बेहतर बनाने में AI सहायता कर सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: किसी रचना का दूसरी भाषा में अनुवाद करने या उसे डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने में भी AI उपयोगी हो सकती
1: जी
0: है। आज ई पुस्तकें, ऑडियो बुक, डिजिटल पत्रिकाएं, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया साहित्य को नए पाठकों तक पहुंचाने में प्रभावशाली माध्यम है।
1: जी
0: AI इन माध्यमों के लिए सामग्री तैयार करने और उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने में सहायता कर सकती है।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: लेकिन देखिए, यहां पर AI की भी अपनी सीमाएं हैं। साहित्य केवल शब्दों का संयोजन नहीं है।
1: जी
0: साहित्य में प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, स्मृति, संवेदना और मानवीय अनुभव साहित्य की आत्मा है।
1: जी
0: इन भावनाओं को मनुष्य अपने जीवन और अनुभवों से महसूस करता है।
1: जी
0: इसलिए AI को साहित्यकार का विकल्प नहीं बल्कि सहायक माना जाना चाहिए।
1: जी सर,
0: अंतिम रचनाकार निर्णय और साहित्य की मानवीय संवेदना लेखक के पास ही रहनी चाहिए।
1: जी सर, बहुत खूबसूरत तरीके से बताए आपने। यानी AI एक सहायक के रूप में काम कर सकती है, शोध, संपादन अनुवाद

0: और प्रस्तुति जैसे कार्यों में मदद कर सकती है, लेकिन रचनात्मकता और मानवीय संवेदना का अपना विशेष महत्व है। तो रवि जी, यहाँ पर हमने एआई का इतने उपयोगी जानकारी हमने अभी तक बात किया है, यानी कि अभी बताइएगा कि हिंदी के विकास में एआई और वॉइस टेक्नोलॉजी के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं?
1: देखिए, ये एआई और वॉइस टेक्नोलॉजी जो है हिंदी के विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है,
0: जी
1: लेकिन इसमें सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं।
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एआई द्वारा तैयार की गई हिंदी हमेशा स्वाभाविक शुद्ध नहीं होती।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: शुद्ध होना इसका आवश्यक नहीं है। कई बार एआई शब्दों को सामान्य अर्थ समझ लेती है,
0: जी
1: लेकिन उसके सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक संदर्भ को पूरी तरह नहीं समझ पाती।
0: जी बिल्कुल
1: हिंदी स्वयं एक विविध भाषा है।
0: जी
1: हिंदी की अनेक बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाई विशेषताएं हैं, अलग
0: जी
1: अलग क्षेत्रों में उच्चारण, शब्दों और बोलने की शैली में अंतर दिखाई देता है।
0: जी
1: वॉइस टेक्नोलॉजी के लिए इन विविधताओं को समझना और सही ढंग से पहचानना एक चुनौती है। और देखिए, एक और चुनौती गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री की कमी भी है।
0: जी
1: डिजिटल दुनिया में अंग्रेजी की सामग्री अभी तक बहुत अधिक है।
0: जी बिल्कुल
1: हिंदी को मजबूत बनाने के लिए विज्ञान, चिकित्सा, तकनीक, इन सब विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री हिंदी में तैयार करना बहुत आवश्यक है।
0: जी
1: इसके अलावा हिंदी में नई तकनीक की शब्दों को लेकर भी संतुलन आवश्यक है। भाषा को इतना कठिन और संस्कृत निष्ठ नहीं बनाया जाना चाहिए कि
0: जी
1: सामान्य व्यक्ति जो है उसे समझ ही ना सके। ये
0: जी सर बिल्कुल
1: हिंदी सरल, सहज, आधुनिक और व्यावहारिक होनी चाहिए।
0: जी
1: इसलिए एआई और वॉइस टेक्नोलॉजी के विकास के साथ भाषाई गुणवत्ता, सांस्कृतिक संदर्भ, क्षेत्रीय विविधता और गुणवत्तापूर्ण हिंदी सामग्री पर विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
0: जी सर एकदम सही कहा आपने।
1: तो ये तो एआई की जो है कमी है ही।
0: एआई हमारे इमोशंस को नहीं समझ सकता और एआई इमोशंस दर्शा नहीं सकता।
1: देखिए, अभी एआई इतना विकसित नहीं हुआ है कि
0: जी
1: वो मनुष्य की संवेदनाओं, भावनाओं को समझ सके और उस प्रकार उसका उत्तर देने में सक्षम हो।
0: जी
1: अभी इस तकनीक को बहुत विकसित होना है। जब तक ये विकसित नहीं होती, तब तक साहित्यकारों को, कवियों को तो इसमें काफी सहायता मिलने वाली है, क्योंकि उनका
0: जी
1: कंटेंट जो है एआई नहीं बना पाएगा।
0: जी
1: कवि कविता लिखने को लिख भी देगी, लेकिन उसमें वो संवेदना, वो भाव नहीं आ पाएंगे जो एक कवि उसमें डाल पाता है, जो एक
0: जी
1: साहित्यकार अपने साहित्य में डालता है। एआई उस मामले में जो है अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है।
0: जी यानी कि आपको क्या लगता है कि उस स्तर तक पहुंच पाएगी?
1: देखिए, कुछ भी संभव है। आज
0: जी
1: तकनीक
0: जी
1: इतनी तेजी से विकसित हो रही है, जितना ज्यादा डाटा एआई के पास होगा उसे उत्तर देने में उतनी ही सहायता होगी।
0: जी
1: तो बहुत तेजी से डाटा जो है एआई के पास आ रहा है।
0: जी हाँ
1: भविष्य में हम कल्पना कर सकते हैं कि
0: जी
1: एआई के पास संवेदना, वेदना और भाव सभी सभी
0: जी
1: उपलब्ध होंगे।
0: जी जी बिल्कुल सर, यानी कि एआई को हम इसको सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: ये जो है अभी ये कवियों की और लेखकों की सहायक हो सकती
0: जी
1: है,
0: और वो सीखने वालों की,
1: सीखने वालों की।
0: बिल्कुल हिंदी की अलग अलग बोलियों, उपचारों और सांस्कृतिक संदर्भों को सही रूप में समझाना और भाव को समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए तकनीक के साथ भाषा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। रवि जी, अंत में हिंदी को डिजिटल और तकनीकी युग की एक सशक्त भाषा बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए?
1: देखिए जयदीप जी, हिंदी को डिजिटल तथा तकनीकी युग की सशक्त भाषा बनाने के लिए सामूहिक और योजनाबद्ध प्रयास करने की आवश्यकता है।
0: जी
1: सबसे पहले हिंदी को डिजिटल सेवाओं में अधिक स्थान देना चाहिए,
0: जी
1: जैसे
0: बिल्कुल
1: कि मोबाइल ऐप, वेबसाइट, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं,
0: जी
1: ई कॉमर्स और एआई आधारित तकनीकों में हिंदी का व्यापक उपयोग होना चाहिए।
0: जी सर बिल्कुल
1: हिंदी में उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सामग्री तैयार करना भी आवश्यक है,
0: जी
1: और विज्ञान, चिकित्सा, इन सब क्षेत्रों में भी हिंदी में अधिक सामग्री उपलब्ध होना आवश्यक है।
0: जी
1: अभी इन विषयों पर सामग्री की बहुत कमी है।
0: जी
1: इससे हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहकर आधुनिक ज्ञान की भी भाषा बन जाएगी।
0: जी
1: इन सब चिकित्सा, इन सब में जो है, जब हिंदी की सामग्री उपस्थित प्राप्त होगी, तब यह हिंदी अभी किसकी भाषा है? हमारे साहित्य की भाषा है,
0: जी
1: कवियों की भाषा है। अभी तक सिर्फ इसी के लिए प्रयोग हो रहा है हिंदी का,
0: जी हाँ
1: परंतु तब विज्ञान की भाषा भी हो पाएगी हिंदी।
0: जी
1: इसमें बहुत सारी सामग्री हमें प्राप्त होगी,
0: जी जी
1: उपलब्ध
0: बिल्कुल
1: होगी। तो देखिए, सरकार, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, साहित्यकारों, उद्योग जगत और आम नागरिकों को मिलकर सब ये काम करना होगा।

0: जी बिल्कुल
1: हिंदी की भाषा तकनीक, अनुवाद प्रणाली, वॉइस टेक्नोलॉजी और एआई के मॉडल को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण हिंदी डेटा और सामग्री तैयार करनी चाहिए पहले,
0: जी
1: और युवाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसमें।
0: जी बिल्कुल
1: उन्हें हिंदी में ब्लॉग, पॉडकास्ट, वीडियो, डिजिटल पुस्तकें और विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना की जाना चाहिए।
0: जी
1: सोशल मीडिया के माध्यम से जब युवा हिंदी को नई पीढ़ी और दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं,
0: जी
1: हमें यह भी समझना होगा कि हिंदी को आधुनिक बनाने का अर्थ उसकी पहचान समाप्त करना नहीं है।
0: बिल्कुल
1: भाषा को समय के साथ नए शब्दों और तकनीकी अवधारणाओं को स्वीकार करने की क्षमता रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा सर।
1: अतः हमारे लक्ष्य केवल हिंदी को बचाना या उसका प्रचार करना नहीं, बल्कि उसे ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, साहित्य और डिजिटल संवाद की सशक्त भाषा बनाना होना चाहिए।
0: जी
1: यदि हमें एआई की शक्ति को हिंदी की मानवीय संवेदना, रचनात्मकता से जोड़ सकें, तो हिंदी का भविष्य, आप मानिए, निश्चित रूप से उज्जवल होगा।
0: जी सर सही कहा सर। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। हिंदी को केवल संरक्षित करना ही नहीं बल्कि उसे शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और डिजिटल संवाद की एक सशक्त भाषा बनाने की भी जरूरत है। रवि वैद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और एआई और हिंदी के संबंध से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जयदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया और श्रोताओं से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया।
0: जी, और श्रोताओं, आशा है कि आज के ये बातचीत आपको भी यह समझाने में सहायता करेगी कि तकनीक का उपयोग हम अपनी हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। अब श्रोताओं, अब हमारे इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में सुनते हैं एक गीत। गीत है पंख होते तो उड़ आती रे, फिल्म सहरा का। इस फिल्म के निर्देशक है वी शांताराम। अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीत दिया है रामलाल जी। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के सुरीली आवाज में ये गीत।

तो श्रोताओं, इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हिंदी कार्यक्रम में एक नए विषय, नए विचारों और नए उत्साह के साथ इसी तरंग पर। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।

0: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Raj Bhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
2: भाषा किसी भी समाज की

0: स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है।

0: उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू ने लिखा है। नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसा वेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज, सूरज, क्या तुमने

0: ये मुझे दिए बैंगनी धब्बे।
1: नहीं, मैं तो पीला हूँ।
0: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं नहीं, मैं तो काला हूँ।
0: गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो लाल हूँ।
0: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
5: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत

0: में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
1: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
2: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
1: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
2: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
1: उनकी माँ का नाम रेनेल्ड स्ट्रोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
2: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
1: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
3: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो।
4: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत बधाई हो। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
2: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।

0: आइए मारिया जी।
1: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ?
0: जी
1: आप कुछ उदास लग रहे हो।
0: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
1: और बुरी?
0: जी।
1: अब भला वो कैसे?
0: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: जी
2: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
0: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
1: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
2: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
3: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
4: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
2: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
3: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
2: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
4: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समत

0: तल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
0: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: ६ मई 1952 को इस माह

महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।

0: एक हिस्से को दिखाया गया है जहां उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने दोस्ती, शराकतदारी और तमाम तर शोबों में तआवुन को आगे बढ़ाया है। भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी की। इसमें 11 रुकन मुल्कों और ग्रुप्स के 10 शराकतदार मुल्कों ने रहनुमा शरीक हुए। इसके अलावा कुछ बैन अलावामी तंजीमों ने भी इसमें शिरकत की। जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग के मौके पर पिछले 3 दिन के दौरान मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहों के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें भी की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यह कहते हुए मुबारकबाद दी है कि इसकी कामयाबी से आलमी मंजरनामे पर एक नाकाबले फरामोश छाप कायम हुई है। उन्होंने कहा कि तारीखी नई दिल्ली ऐलामिये पर दस्तखत होना महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आलमी सतह पर भारत के बढ़ते हुए असर रसूख का इजहार है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जनाब मोदी की नजरिया साज क्यादत में ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत ने मजबूती, इख्तरा, इश्तराक और पायदार निज़ाम को अव्वलीन तरजीहात के तौर पर उजागर किया। वजारत खारजा ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के कामयाब इनेकाद में उनके तआवुन के लिए सभी मरकजी हुकूमत के महकमों और एजेंसियों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। यह सरबराह मीटिंग कल कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। वजारत ने कहा है कि इस सरबराह मीटिंग का इनेकाद एक वसी तकरीब थी जिसमें हुकूमत और पूरे मुल्क की जामे कोशिशों की जरूरत थी। उसने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी करने के लिए सभी रियासती हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने कहा है कि फौज की अनथक कोशिशों के सबब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर कंट्रोल में है। वजारत दिफा ने 2025-26 की अपनी ताज़ा सालाना रिपोर्ट में कहा है कि इन कोशिशों से तशद्दुद में नुमाया कमी आई है, एहतजाज कम हुए हैं और पत्थरबाजी के वाकयात बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल हिस्से में सूरत हाल में नुमाया कमी आई है। ताहम गुज़श्ता बरस फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल्स की सतह की बातचीत के बाद बड़ी हद तक सूरत हाल मुस्तहकम हुई है लेकिन गैर यकीनी बरकरार है। मज़कूरा रिपोर्ट में चीन के साथ मजमूई हालात को भी उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि शुमाली सरहदों के दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फोर्सेस की तैनाती में साल 2025 में नुमाया कमी आई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 21 रियासतों में बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले यकसां सिविल कोड यूसीसी नाफिज करेंगी। मुंबई में नामनिगारों से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि कई रियासतों में यूसीसी नाफिज कर दिया गया है और उन्हें पूरा एतमाद है कि इसे 2029 से पहले बीजेपी और एनडीए की सरकार वाली 21 रियासतों में नाफिज कर दिया जाएगा। जनाब अमित शाह ने कहा कि तलाक सलासा यानी एक साथ तीन तलाक के सिलसिले को खत्म करके मुस्लिम खवातीन को बराबरी के हुकूक दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के जरिए मुल्क के फौजदारी अदलिया निज़ाम को मजबूत बनाया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली में मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि आज शाम हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के मुख्तलिफ अजला में बहुत शदीद बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के तनाजुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और सूरत समेत 19 जिलों में इस वक्त येलो अलर्ट है। यहां तेज बारिश के साथ साथ 41 से 61 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। इस दौरान बनासकांठा, पाटन, कच्छ, द्वारका और पोरबंदर में औसत बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का भी इम्कान है। मकामी हुकाम ने कहा है कि खास तौर से अहमदाबाद और बड़े शहरी इलाकों में शदीद बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर पानी भरने और ट्रैफिक मुतासिर होने का इम्कान है। अहमदाबाद से हर्षल पांड्या की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे मुल्क में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश की जन्म की याद में मनाया जाता है जो दानिशमंदी, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह 10 दिन तक चलने वाली तकरीबात का आगाज

0: आज हो गया है। इस मौके पर लोग मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में लाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने भी सभी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। नामनिगारों से बात करते हुए जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि गणेश चतुर्थी के पवित्र मौके पर राजस्थान से बीजेपी को हौसला अफजा नतीजे मिल रहे हैं।
1: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी उत्साह उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। गणेश चतुर्थी के दिन हमें राजस्थान से भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने यूएस ओपन टेनिस का मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। उन्होंने कल रात न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7 और 6-2 से हरा दिया। इस साल ज़ेवरेव का ये दूसरा बड़ा टाइटल है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता था। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में नुमाया कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: The Houthis took over the islands after hundreds of government-allied forces withdrew from the archipelago. Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the U.S. Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. Ben Shelton's loss keeps the 23-year Grand Slam title drought alive for American men, though he became the first black American man to make it to a U.S. Open final since Arthur Ashe in 1972. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS leaders stress energy security as crucial foundation for economic development and national security, caution against weaponization of technology and critical minerals. China significantly cuts down troop deployment in 2025, says Defense Ministry report, terms security situation in Jammu and Kashmir as stable. Union Home Minister Amit Shah says India's linguistic diversity strengthens unity amidst diversity, congratulates people on occasion of Hindi Divas. IMD predicts heavy rain and thunderstorm for several districts across Gujarat today. Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता अब समाचार विस्तार से ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा सामाजिक तथा आर्थिक विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है एक रिपोर्ट
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन नवाचार सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया सूचना और प्रसारण राज्य

0: मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा

0: होए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
3: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी

0: कामना करता हूँ भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
1: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 2:30. ఇప్పుడు నిషిగన్ మరాఠీ కార్యక్రమం.
3: హే ఆకాశవాణిచా హైదరాబాద్ కేంద్ర హే मध्यम लहरी 400° अर्थात 738 kHz वर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍप वरून प्रसारित करीत आहोत आजचा आपला आवडता मराठी कार्यक्रम निशिगंध। रसिक श्रोते हो, आपणा सर्वांना सोनाली कुलकर्णीचा सप्रेम नमस्कार। श्रोते हो, आज भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी गणाधीश विघ्नहर्ता गणपती बाप्पाची प्रतिष्ठापना सर्वत्र झाली आहे। आपणा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या आणि गणेशोत्सवाच्या मनपूर्वक मंगलमय शुभेच्छा। श्रोते हो, गणेशोत्सव हा केवळ सण नाही तर आपल्या भारतवर्षाच्या संस्कृतीचा, भक्तीचा आणि ऐक्याचा महासोहळा आहे। काळाचा सोबती बनून या उत्सवानं अनेक दशकांचा प्रवास पूर्ण केला आहे। एकेकाळी घरोघरी कुटुंबियांच्या सान्निध्यात फक्त साजरा होणारा गणेशोत्सव आता मोठ्या सार्वजनिक सोहळ्याचं रूप घेऊन आला आहे। तर या सगळ्याचा वेध घेण्यासाठी आजच्या निशिगंध मराठी कार्यक्रमात प्रसारित करीत आहोत गणेश चतुर्थी निमित्त विशेष कार्यक्रम घरगुती ते सार्वजनिक गणेशोत्सव बदलते स्वरूप। लेखन आणि निवेदन सोनाली कुलकर्णी आणि सीमा कुलकर्णी यांचं ऐकूयात। तर
4: श्रोते हो नमस्कार, मी सीमा।
3: मी सोनाली।
4: आपणा सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा।

0: నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాలలో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है. अब आप फखरुद्दीन के साथ इलाकाई खबरें सुन रहे हैं. पेश है सुर्खियां. गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इनकी अहलिया ने खैरताबाद महागणपति की मूर्ति की खसूसी पूजा की. गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति की आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को विनायक चौथी की मुबारकबाद पेश की. उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो इसके लिए ओहदेदारों को ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी. नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे. इस पस मंजर में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास मोहन सिंह और खैरताबाद

जोन की DCP शिल्पावली ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और अहदेदारों को मुतादुद हिदायतें दिए। हैदराबाद में बारिश की वार्निंग बरकरार रहने के पेश नज़र जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजामिया को चौकस रहने और ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के खैरताबाद में 69 फीट गणेश बुलंद मूर्ति पर गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला और उनकी अहलिया ने खसूसी पूजा की। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि अगरचे गणेश उत्सव की इब्तदा महाराष्ट्र में हुई, लेकिन खैरताबाद गणेश की मूर्ति को मुल्क भर में एक खास शनाख्त हासिल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 72 बरसों से यहाँ गणेश की मूर्ति नसब करके उत्सव मनाना एक काबिले ज़िक्र रिवायत है। गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति के आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे। उन्होंने कहा कि विघ्नेश्वर लोगों की जिंदगियों की तमाम रुकावटें दूर करें और रियासत के साथ पूरे मुल्क में अमन खुशहाली अता फरमाए। इस प्रोग्राम में वजीर पूनम प्रभाकर और मुकामी रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने शिरकत की। खैरताबाद के बड़े गणेश के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पहुँचने के पेश नज़र पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के आवाम को गणेश चौथी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने नेक ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि विघ्नेश्वरा के आशीर्वाद से हर शख्स की जिंदगी की तमाम रुकावटें दूर हो और खुशी, सेहत, खुशहाली और कामयाबी हासिल हो। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर कायम की गई गणेश की मूर्ति के पास अहले खाना के साथ खसूसी पूजा की। गणेश उत्सव के पेश नज़र अकीदतमंदों को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए, इसके लिए उन्होंने अहदेदारों को ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी। उन्होंने हैदराबाद के साथ साथ तमाम ज़िले मराकज़ में ट्रैफिक में मसाइल पैदा ना हो, इसके लिए मौसर इंतजाम करने और अकीदतमंदों की ज़्यादा भीड़ वाले गणेश मंडपों के पास मुनासिब हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की फराहम की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में सरकारी तौर पर मुनक्किद किए जाने वाले तेलंगाना यौम नजात की तकरीबात में हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। नायब सदर के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम का CRPF के डिप्टी कमांडेंट विकास मोहन सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र और खैरताबाद जोन की DCP शिल्पावली ने जायजा लिया। उन्होंने तेलंगाना यौम नजात की तकरीबात और नायब सदर के दौरे के पेश नज़र किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर इकदाम के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दिए। यौम नजात के मौके पर परेड ग्राउंड में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन खिताब करेंगे। इस तकरीब में गवर्नर शिवप्रताप शुक्ला, मरकजी वजीर बराए सखाफत व सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत, मरकजी वजीर बराए कोयला व कानकुनी किशन रेड्डी, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय और BJP तेलंगाना के रियासती सदर रामचंद्र राव शिरकत करेंगे। हैदराबाद में रात भर हुई मूसलाधार बारिश और बारिश का अलर्ट जारी होने के पेश नज़र ज़िले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने GHMC, हाइड्रा, वाटर वर्क्स, पुलिस, महकमे बरखी और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों को मुतादुद हिदायतें जारी किए। वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कहीं भी पानी जमा ना हो और अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए, इसके लिए पेशगी इकदाम करने के अहकाम दिए। मुतालिका महकमों के अहदेदारों बाहमी तामुल के साथ काम करते हुए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा वार्निंग के पेश नज़र वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि हिमायत सागर, उस्मान सागर के नशेबी इलाकों के अलावा मूसी नदी के अतराफ के इलाकों में रहने वाले अवाम को चौकस किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर दोनों आबी जखायर लबरेज होने की सूरत हाल पैदा हुई तो गेट खोलकर मूसी नदी में पानी छोड़ने का इम्कान है, इसके लिए पेशगी एहतियाती इकदाम किए जाएंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़रूरत पड़ने पर नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने गणेश मंडपों और गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मकाम पर भी खसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। राजन्ना सिरसिला ज़िले में रात से हुई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा 32.1 मिलीमीटर बारिश एलेंता कुंटा में रिकॉर्ड की गई। बोइनपल्ली में 18.3,
विमलवाड़ा में 13.6, इल्लारेड्डी पेट में 13.1 और विमलवाड़ा रूरल में 12।

0: 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अब आप आकाशवाणी हैदराबाद से खबरें सुन रहे हैं। मजीद अपडेट के लिए हैदराबाद के इलाकाई खबरों के शोबे एक्स हैंडल AIR न्यूज हैदराबाद को फॉलो करें और एयर न्यूज हैदराबाद चैनल को सब्सक्राइब करें। कांग्रेस पार्टी के सिरसिला हल्के इंचार्ज के महिंदा रेड्डी ने बताया कि रवां माह के अवाखिर में सिरसिला में वजीर आला रेवंत रेड्डी एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि BC तबके की मर्दमशुमारी और SC जुमराबंदी करने का एजाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हासिल है। के महिंदा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि हाल ही में असेंबली के गेट के सामने BRS अरकान असेंबली की जानिब से किया गया हाई ड्रामा KCR के फार्म हाउस से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक था। हैदराबाद शहर में तामीर किए जाने वाले इंद्रम्मा टावर के LIG मकानात के लकी ड्रा में मुंतखब अहल मुस्तहकीन को इसी हफ्ते सरकारी अलाटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर VP गौतम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 6,660 उम्मीदवारों की फील्ड लेवल जांच मुकम्मल हो चुकी है और बाकी अहल उम्मीदवारों की जाँच भी इसी हफ्ते मुकम्मल कर ली जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि मकानात की अलाटमेंट का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से जारी है। उन्होंने मुस्तहकीन को खबरदार किया कि ब्रोकर्स और दरमियानी अफराद पर भरोसा करके रकम अदा ना करें, वरना वो धोखादही का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने मुस्तहकीन को हिदायत दी कि पहली किस्त की रकम सिर्फ अलाटमेंट लेटर में दर्ज सरकारी बैंक अकाउंट में ही जमा करें। गणेश चतुर्थी के मौके पर जनगांव जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक गरीब खानदान को इंद्रम्मा घर मंजूर करके सहारा दिया। जनगांव म्यूनसिपाल्टी के हदूद में वाक़ वीवर्स कॉलोनी के रहने वाली M पद्मा ने इंद्रम्मा स्कीम के तहत दरख्वास्त दी थी। ताहम तकनीकी वजूहात की बिना पर इनका घर मंजूर नहीं हो सका। इस सूरत हाल से लायल मुस्तहक खानदान ने घर मंजूर होने की उम्मीद में कर्ज लेकर अपनी जाती जमीन पर मकान की बुनियाद तामीर कर ली। बाद अज़ां M पद्मा ने कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी परेशानी से आगाह किया। कलेक्टर ने मामले का जायजा लेने के बाद इंद्रम्मा घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद मंजूर करके अहकाम जारी कर दिए। जनगांव म्यूनसिपल कमिश्नर राजशेखर रेड्डी ने आज पद्मा के घर पहुंचकर उन्हें मंजूरी के कागजात हवाले किए। महबूबाबाद जिले में अवाम ने अकीदत व एहतराम के साथ गणेश चतुर्थी के मौके पर त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाया। जिले हेडक्वार्टर के अवाम मंडलों और देहातों में मुख्तलिफ शक्लों की गणेश की मूर्तियां नसब करके खसूसी पूजा की गई। सुबह से ही अकीदतमंदों ने गणेश भगवान की पूजा की और मुख्तलिफ नजराने व नियाज पेश किए। कई मुकामात पर खसूसी मंडप कायम करके सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। गणेश चतुर्थी के मौके पर संगारेड्डी के मशहूर और कदीम रेजिंतल सिद्धि विनायका और रुद्राराम गणेश गड्ढा मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और खसूसी पूजा की जा रही है। बड़ी तादाद में स्वामी के दर्शन के लिए अकीदतमंद कतारों में इंतजार कर रहे हैं। जिले भर में बड़ी तादाद में गणेश मंडप कायम करके गणेश की मूर्तियाँ नसब की गई हैं। और अब आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और इनकी अहलिया ने खैरताबाद महागणपति की मूर्ति की पूजा की और गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि गणपति के आशीर्वाद से तमाम अवाम खुशहाल रहे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को विनायक चौथी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो इसके लिए अहदेदारों को जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन 17 सितंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस पस मंजर में CRPF के डिप्टी कमांडेंट ने अहदेदारों के साथ मीटिंग की और हैदराबाद में बारिश की वार्निंग बरकरार रहने के पेश नज़र जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने इंतजाम का जायजा लिया। आकाशवाणी हैदराबाद से इलाका
1: के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और

0: अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. BRICS leaders have stressed that energy security is a crucial foundation for social and economic development, national security and the welfare of all nations. During the two-day BRICS summit held in New Delhi, the member nations highlighted the need to enhance energy security by ensuring energy market stability and maintaining undisrupted flows of energy from diverse sources and protection of critical energy infrastructure. During the summit, Prime Minister Narendra Modi cautioned that the weaponization of technology

0: సమయం 8:45. ఇప్పుడు సమాచార్ సంధ్య, ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की. कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की. वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की. अमेरिकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है. देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है. भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी.
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है. इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई. इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है.
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त

0: ना करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित दो दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन

0: सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग राजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it.
3: The BRICS was very clear that any act of terrorism is criminal, and they in fact explicitly recognized Pahalgam attack. They condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and emphasized the zero tolerance for terrorism, rejected double standards in countering it.
2: India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half of the world's population and around 40% of the global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin.

0: नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से जो हर माता पिता के दिल को छूता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का अधिकतर विकास करीब करीब 90% तो उसके शुरुआती 5 वर्षों में ही हो जाता है। जी हाँ, यही वो समय होता है जब बच्चे के भविष्य की इबारत लिखी जा रही होती है। लेकिन अफसोस, कई बार सही जानकारी न होने की वजह से हम अनजाने में अपने बच्चों से उनका वो सुनहरा कल छीन लेते हैं जिसके वो हकदार हैं। बच्चों को पालने का अर्थ उनका निर्माण करना है, और इसी निर्माण की दो मजबूत कड़ियां हैं सही पोषण और मानसिक प्रोत्साहन। इसी बेहद जरूरी और संवेदनशील विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा आज का विषय है बाल विकास पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन, यानी न्यूट्रिशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल दिल्ली के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट। आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर। लेकिन पहले 011 यानी दिल्ली का कोड, और फिर 2331 04 82 1 7 1 7 2 3 7 1 7 1 0 6 और 2 3 3 1 4 4 4 4, और फिर आप हमसे पूछिए अपने सवाल। व्हाट्सएप नंबर है हमारा दोस्तों 9289094044, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का है इंतजार। तो सबसे पहले चलिए बात शुरू करते हैं डॉक्टर पांडे से, जो यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आमतौर पर यह कहा जाता है डॉक्टर पांडे कि बच्चों के जो शुरुआती 1000 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके पोषण के बारे में और उनके दिमागी और शारीरिक विकास को लेकर। ये क्या धारणा है और कितना सच है?
2: नमस्कार, पहले तो आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें मैं एक और, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, एक बहुत, हम लोग अभी जब ये डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हम पोषण माह मना रहे हैं जो कि 9 सितंबर से ही शुरू हुआ है
0: जी।
2: और जो आपने बात की 1000 दिनों की, तो ये 1000 दिन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट अराउंड 2007 और 8 के करीब आया था, जिसमें हम कहते थे कि 2270 दिन प्रेगनेंसी के और 365 मतलब पहले 2 वर्ष जो हैं ये हम तीनों ऐड करते हैं तो हम कहते हैं ये पहले 1000 दिन है। अब ये जो पहले 1000 दिन है ये एक बच्चे के शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास का नींव रखते हैं, और बच्चा आगे जाके कैसा होगा ये उस पर जो केयर हम इस ड्यूरेशन में दे रहे हैं माँ को और बच्चे को, सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि

0: माँ को भी वो उसके फ्यूचर को डिटरमिन करता है. तो फर्स्ट 1000 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो आपने इशू बोला कि अर्ली स्टिमुलेशन, तो इस पीरियड में माँ को भी सपोर्ट करना प्लस बच्चे को स्टिमुलेट करना एक कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट 1000 डेज का.
1: जी, और हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता रमा शंकर वाजपेयी. जी वाजपेयी जी, क्या सवाल है आपका?
2: नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता था कि इंटरनेट और जंक फूड के जमाने में क्या बाल विकास और पालन पोषण सही ढंग से हो पाएगा, कृपया बताएं.
1: जी डॉक्टर बिष्ट
3: नमस्कार, और आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वाजपेयी जी, आपने तो बहुत सही बात कर ली, और आपने मतलब जो दुविधा जो समाज और देश और विश्व इस समय जूझ रहा है वो जंक फूड है. जंक फूड का जिस तरह से विज्ञापन किया जाता है, जिस तरह से बढ़ाया जाता है, और जंक फूड के जितने भी हानिकारक दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सब पे आपने सही बात की. ये बहुत बहुत गलत बात है. जंक फूड जैसे कि पैकेज फूड है, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पैकेट चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूटी, जो भी आप जिस भी तरह के हैं, इन सब से बिल्कुल जो आहार है बिल्कुल सही नहीं है, और न्यूट्रिशन पोषण के लिए बहुत बहुत हानिकारक है.
1: जी, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है. और अब हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पांडे की जो पूरक आहार है, जिसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, यानी माता के दूध के बाद जो ठोस आहार देना शुरू होता है, उनमें किन तत्वों का होना बहुत जरूरी समझा जाता है, माना जाता है या है?
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का, बिकॉज ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हमने बहुत धीमा इम्प्रूवमेंट देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 decades. अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम 2-3 चीज़ें देखते हैं. हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे को सही समय पे शुरुआत की गई, मतलब 6 महीने के बाद से, क्या बच्चे को क्वांटिटी और क्वालिटी जो मिल रही थी वो सही मात्रा में मिल रही थी, और क्या बच्चे को उतनी बार खिलाया जा रहा था, और अगर खिलाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें उसको खिलाई जा रही थी. तो अब आपका जो प्रश्न आता है, और हमारे इन आंकड़ों में बहुत सुधार नहीं आया है, और उसका कारण कहीं ना कहीं अनभिज्ञता भी है. और क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं बच्चा 6 महीने का है तो उसको हम क्या ही दे सकते हैं, बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बट यहीं पे गड़बड़ी है, क्योंकि वो पहला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रैपिड फेज होता है. तो इस समय बच्चे को माँ के दूध के साथ कुछ कुछ ऊपरी आहार जो कि घर में बनता है, और अभी जो और जो घर में हम क्या देते हैं, हम दाल चावल दे सकते हैं, हम ये नट्स और सीड्स जो होते हैं इनको पीस के दे सकते हैं, कुछ भी साबुत नहीं देना है क्योंकि उसको मसल के देना है. जो सॉफ्ट फ्रूट्स हैं वो हम बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे केला है, आम है, और हम बच्चे के खाने में दूध तो रहेगा ही रहेगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करते हैं तो उसको भी बहुत मैश्ड प्यूरीड फॉर्म में हम बच्चे को शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है. तो ये सब मिलेगा तभी, और हर दिन मिलना है, ये भी नहीं है कि एक बार हफ्ते में या 30 दिन में एक बार, ये अगर बच्चे को हर दिन मिलेगा तो उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो आवश्यकता है वो शायद पूरी हो सकती है.
1: जी, ये तो बात हुई पोषण की, और चूंकि हमारे विषय में शामिल है आज प्रोत्साहन भी, तो डॉक्टर बिष्ट आप ये कृपया हमें बताइए कि ये शुरुआती प्रोत्साहन या अर्ली स्टिमुलेशन जिसे कहा जाता है, ये है क्या?
3: थैंक यू. एक तो संपूरक आहार के लिए जैसे मैडम ने कहा कि संपूरक आहार के साथ साथ कई बार हम इसको वीनिंग फूड कहते थे, तो वीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने दूध धीरे धीरे कम करना है. दूध की मात्रा कम नहीं करनी है. जो पहले 6 महीने आपने केवल स्तनपान किया था, उसके साथ दूध अगले 2 साल तक आपको सतत निरंतर स्तनपान कराते रहना है, और धीरे धीरे करके जैसे मैडम ने कहा, आपको संपूरक आहार की मात्रा पहले कुछ चम्मचों से लेके, फिर आधी कटोरी से लेके, फिर 9 महीने में 1.25 कटोरी से लेके, और 1 साल पे 1 कटोरी दिन में 3 बार देने की व्यवस्था है, जिसमें आप तरह तरह के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध है, घी है, कुछ फ्रूट्स हैं, तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है उसको देना बहुत ज़रूरी है. ये जो स्टिमुलेशन का पार्ट है, प्रोत्साहन का जो पार्ट है, वो खान पान से लिया जाए, तो उसको खाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए वो एक बहुत जरूरी बात.

0: है कि खाने का समय जो हो वो ऐसा समय हो जो पारिवारिक समय हो, सब मिलके खा रहे हो। ऐसा नहीं हो कि भाई तुझे जल्दी काम करके निपटा के मैं ऑफिस निकलने वाली हूँ या निकलने वाला हूँ, या चलो इसको खिलाते फिर हम कहीं घूमने जाएंगे, या इसको रख दो। तो वो जल्दबाजी में नहीं कर सकते, और वो बच्चे के जो समय है जब उसकी भूख है उसके हिसाब से होना चाहिए, और कुछ धीरे धीरे के अनुशासित होता रहता है वो समय के साथ। प्रोत्साहन में जो दूसरा एक जो आप कर रहे हैं अर्ली स्टिमुलेशन, वो मानसिक प्रोत्साहन है। और अर्ली स्टिमुलेशन में हम खाने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे को किस तरह से बातें करी जा रही है, खाने के समय उससे बात करते हैं, और कई बार हम उसको कहानी सुनाते सुनाते सुनाते
1: जी
0: खिला रहे हैं, और आज ये हुआ था वो हुआ था और आपने हमने देखा एक बूढ़ी अम्मा आई थी और ये हुआ। तो इस तरह के जो दादी अम्मा और कहानियाँ सुना सुना के बातें करते थे, उससे बच्चे के बोलचाल में आती है, भाषा में होता है, और उसके जो न्यूरल कनेक्शन बढ़ते हैं व्यवहार से लेके सब उनमें, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है और डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर पांडे, आपसे ये सवाल है हमारा कि बच्चों में जो ये समस्याएं होती हैं कि उनका कद ठीक से न बढ़ पाना उम्र के मुताबिक, या उनका वज़न जो है बहुत कम रह जाना, स्टंटेड ग्रोथ जिसे कहते हैं, वज़न बहुत कम रह जाना, यानी अंडर वेट हैं या स्टंटेड ग्रोथ है तो कद नहीं बढ़ा उनका, तो ये समस्याएं हैं, तो इसमें यूनिसेफ ने क्या इन्हें पहचाना है और इसके लिए क्या उपाय किए हैं, ये हमारा प्रश्न रहेगा। लेकिन इधर हिसार हरियाणा से हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, राजेंद्र, तो पहले सुन लेते हैं इनका सवाल।
2: मनीष जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, इनको भी नमस्कार जी।
1: शुक्रिया जी, नमस्कार।
2: मैं नहीं जानने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, या नमोनिया एक मुख्य बीमारी है जो बच्चों को, तो इसके बाद खाने पीने में क्या सावधानियां रखी जाए और जो बच्चों को आगे चल के सही रहे 1000 दिन में। और दूसरा, आजकल बच्चे जो छोटे बच्चे 2 साल के ही मोबाइल के बहुत ज्यादा शौकीन हो गए, मोबाइल वगैरह नहीं रह सकते, इसके बारे में जानना था आगे मोबाइल क्या असर दिमाग पे डाल सकता है इसके बारे में।
1: जी, तो इन्होंने दरअसल दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिला दिए हैं, और ये हमारे जो आपसे नियमित प्रश्न होने वाले थे उनमें पहले से शामिल हैं। एक तो ये है कि निमोनिया की, खैर इन्होंने जो बात की वो एक बात है, और दूसरी ये है कि जो हम स्टिमुलेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कई बार माता पिता ये समझ लेते हैं कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा है, सो एज ए स्टिमुलेंट इट इज़ आई मीन एप्ट और राइट और करेक्ट टू इंट्रोड्यूस डेम टू सम यू नो मीडिया और रील्स और टेलीविजन। तो ये कितना सही है, कितना उचित है या गलत है, इनका सवाल भी इससे जुड़ा हो। डॉक्टर बिष्ट
0: राजेंद्र जी, आपके दोनों सवाल ही जैसे बोला है मुनीष जी ने, बहुत सही है। निमोनिया के से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक चिकित्सक होने के समय से निमोनिया एक काफ़ी जानलेवा बीमारी थी, और हमारे अभी भी जो शिशुओं की मृत्यु दर है उसका जो मुख्य कारक है उसमें दस्त और निमोनिया अभी भी मेजर कारण होते हैं। और उसका निवारण से लेके उसका रोकथाम के लिए सरकार अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है। टीकाकरण एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत तरह के टीके लगाते हैं जो जो खतरनाक निमोनिया से बचाने के काम करते हैं, मगर जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसमी वायरल निमोनियाज हैं, वो निमोनियाज होते हैं, उनमें आपको यही है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हो उन लोगों से बचा के रखिए, और निमोनिया जैसे कोविड था, इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, इन सब बीमारियों को आगे फैलने ना दीजिए। अगर एक बार निमोनिया हो जाता है राजेंद्र जी जैसे आपने कहा है, तो किस तरह का है, तो अगर किसी को बार बार निमोनिया हो रहा है कि क्या उसको सांस में तकलीफ है जिसको हम एस्मा कहते हैं, और बार बार बार बार सांस में निमोनिया होना या भाप लगाने की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, वो एस्मा है, उसमें वातावरण में कुछ बदलाव की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा आपका जो सवाल था कि टीवी और मीडिया का जो टीवी उनका मोबाइल का जो शौक है, मोबाइल के शौक के लिए 0 स्क्रीन टाइम है 2 साल से कम बच्चे के लिए, तो आप अपने परिवार में, आप बड़े हैं, आप अपने परिवार में अपने लोगों को बताइए कि इससे मानसिक जो विकास होता है वो बहुत कम हो जाता है, कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, और आगे जाके बच्चे की जो जो कैपेबिलिटीज़ है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो कम हो सकती हैं। तो आप 2 साल तक तो 0-0 है, उसके बाद हम कहते हैं कि जब जैसे स्कूल जा रहे हैं और हमें लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी काम होता है, और आजकल हमने कोविड में देखा है कि एक माध्यम बन गया है शिक्षा का भी, तो नेट और इंटरनेट भी, तो उसमें हमने 2 साल 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम किसी को भी अलाउ नहीं कर रखा।
1: जी, हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी, तो धर्मवीर जी बताइए क्या है आपका प्रश्न।

0: जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गाजनी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे पौष्टिक आहारों में आप बताते हैं दूध दही पनीर मक्खन घी, ये अब कुछ कुछ दिन पहले ही देखिए आपने समाचार में सुना कि ये हमारे पौष्टिक आहार ये भी नकली हमारे सामने आ रहे हैं, तो आम इंसान तो भ्रम में रह जाएगा कि हम कौन सा ले कैसा खाएं। पनीर नकली में खोया भी नकली, अभी मक्खन भी नकली आया था, वो तो हमारे हमने ही खरीद लिया था गलती से तब फिर इसको वापिस करा, तो इसके लिए क्या सावधानी बरतें और क्या ये जंक फूड में भी ये नकली देते हैं तो जहर पे जहर, नीम कितना करेला है नीम चला, तो ऐसे ये डबल डबल जहर हमारे पे बच्चे को अनजाने में खाने पड़ जाते हैं
1: जी धर्मवीर जी, हालांकि ये जो आपका प्रश्न है ये एक अलग दिशा का प्रश्न है और हमारे आज के विषय से थोड़ा अलग है। हालांकि बहुत ही गंभीर ये समस्या है और बराबर अखबारों में और अन्य मीडिया के माध्यमों से ये समस्या जो है उजागर हो रही है, लेकिन डॉक्टर पांडे आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
2: धर्मवीर जी, आई थिंक एक जो बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है कि बाहर जो कई बार जो मिल रहा है वो सही नहीं है, तो सबसे बड़ी शुरुआत तो यही है कि हम जो भी हम एज डॉक्टर्स जो मैसेज देते हैं कि भाई जितना हो सके आप घर घर का बना खाना खाइए, कंप्लीट प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर भी अगर हम जागरूक हैं तो शायद हम अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम बचा सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जानकारी है, इस जानकारी को अब आपको सही दिशा में ले जाना है, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी, और बाकी जैसा मुनीश जी ने कहा कि ये बहुत ब्रॉडर सिस्टमिक चेंजेस की तरफ भी डायरेक्ट कर रहा है, तो मे बी आज का कॉन्वर्सेशन इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा।
1: बहरहाल धर्मवीर जी शुक्रिया, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछा। और सासाराम बिहार से हमसे जुड़ गए हमारे श्रोता अमित उपाध्याय जी। अमित जी क्या सवाल है आपका?
3: जी, विशेषज्ञ हैं, पहले नमस्कार। मेरा एक सवाल था कि जैसे कि जो बाहर में बहुत सारे लोग रहते हैं एकल परिवार में, तो उनको समय नहीं दे पाते हैं, तो एक मैं बोल रहा था कि डिसिप्लिन चार्ट थोड़ा सा बता देते कि कैसे हम लोग कुछ समय अगर बच्चों को सुबह में या शाम को थोड़ा सा भी समय देते हैं ताकि बच्चों को मानसिक विकास हो सके, जो 5 साल जो आपने जिक्र किया कि 5 साल तक खासकर, तो कैसे हम लोग इसको फॉलोअप कर सकते हैं? हम लोग थक जाते हैं या उतना समय नहीं दे पाते हैं भागम धाम के जिंदगी में, लेकिन चाहते हैं कि बच्चे का विकास भी हो, तो हम लोग कैसे क्या इसको एक डाइट चार्ट के तरह अनुसार डिसिप्लिन की तरह की कैसे इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा इस पर एक बार डिस्कशन हो जाए।
1: जी जी जी, डॉक्टर बिष्ट से हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका सवाल है और खास तौर पर ये आपने न्यूक्लियर फैमिलीज जो एकल परिवार हैं जिनमें बड़े बूढ़े माता पिता नहीं हैं, सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं छोटे, तो वहाँ वो कैसे फिर इस समस्या से निजात पाएं या कैसे क्या समाधान हो? दरअसल कहना
4: अमित उपाध्याय जी, ये तो इस नए समाज की और एक अर्बन समाज की एक दुविधा है कि हमें एक जो संयुक्त परिवार के फ़ायदे थे और संयुक्त एक कंप्लीट होलसम फैमिली जो होती है जिसमें दादा दादी नाना नानी चाचा बुआ सब होते हैं, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। मगर जहाँ तक सवाल है कि एक परिवार में जहाँ पे माता पिता हैं और भाई बहन हैं, तो उनमें जो स्टिमुलेशन है क्योंकि मानसिक रूप से करने के लिए उसको व्यवहार, मैंने पहले भी कहा, उसको स्टिमुलेट होना चाहिए, तो माँ बाप के पास समय से आप उनको जितना भी समय मिलता है आपको, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा 24 घंटे में से 23 घंटे बिगर माँ बाप के रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको जो संरक्षण देना है और जो साथ देना है बच्चे का वो तो है ही, तो अगर जितने भी घंटे मिल रहे हैं आपको 10-12 घंटे जितने मिल रहे हैं उस वक्त आप अलग अलग समय बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, बच्चों को कुछ कुछ उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, छोटे छोटे गेम्स दे रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छुपन छुपाई का गेम खेल रहे हैं, कई बार पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं, कई बार कट्टा कट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ भी चौकस खेल रहे हैं, तो आप कुछ भी गेम खेल रहे हैं, कई बार हम उन्हें थोड़ा छोटा छोटा जंप कराते हैं, लॉन्ग जंप कराते हैं, पोशा पा खेलते हैं, खींचा खाची करते हैं, दीज आर ऑल स्टिमुलेशन गेम्स विच वर जो हम आराम से पहले से गाँव में करते थे, रस्सा कस्सी कर रहे थे, थोड़ा बहुत हल्की सी कुश्ती भी टाइप की कर रहे थे, जूटी बूटी, तो ये सब था जो बच्चे को स्टिमुलेट करता था। कई बार चीज़ें छुपा देते थे, उनको ढूंढ के लाने के लिए बोलते थे, दीज आर गेम्स विच यू कैन डू, एंड सर्टेनली हम ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल में दिखा के उनसे सारे गेम सिखाने और करना है, आप घर पे बैठ के जो पहले हम काम करा करते थे कर सकते, पेड़ के आगे आंगन में पेड़ के पीछे छुप गए।

0: सब करना, दैट इज ऑल. आंख में बंद करके आप कर रहे हैं, वो जो आंख मिचोली थी वो बहुत बहुत अच्छा खेल था, क्योंकि उसमें उसमें बच्चों को अंधेरे में भी या आंख बंद करके भी चलने का, छूने का स्टिमुलेशन मिलता था.
1: जी डॉक्टर साहब. और ये हमारे श्रोता हिमाचल प्रदेश से शिमला से हमसे जुड़े हैं और पूछना चाह रहे हैं शिमला से, राकेश जी. जी कहिए, क्या है आपका सवाल?
2: जी नमस्कार सर, और मैं राकेश बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र कोटखाई शिमला से. तो
1: जी
2: मैं हमारे जो है सेब का जो है फल होता है, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जब हम बच्चों को फल फल फ्रूट खाते हैं तो किस तरह से खिलाने चाहिए? कई बार हम बच्चों की आदत होती है कि फल ऐसे ही खा लेते हैं, कि क्या फल फल जो है धो के खाना कितना आवश्यकता है, जैसे कि खासकर जो है हमारे एप्पल हो गए.
1: जी जी जी डॉक्टर पांडे.
3: देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, पहली बात तो है कि अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है, उसको हम कहते हैं ना थोड़ा सा सेमी सॉलिड, मतलब वो जो चम्मच से गिराने पे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा निकले. अब आप जो सेव की बात कर रहे हैं, जो ग्रो होता है छोटे बच्चों को, इवन छोटे छोटे मैश अगर आप काट के देंगे पीसेस, तो उसके गले में फंस सकते हैं. सो बहुत केयरफुल रहिए छोटे बच्चे को. जब तक बच्चा अपने उंगली से पकड़ के उसको, उसके दांत ना निकल आए, वो चू ना कर पाए, तब तक उसको कटा हुआ कोई पीस नहीं देना है, बिकॉज निगलने और गले में फंसने की संभावना होती है. शुरुआती महीनों में उसको मैश्ड फ्रूट्स ही देने हैं. आपने सेब की बात की, नॉर्मली सेब हम देर से शुरू करते हैं. शुरुआत हम कहते हैं कि हम केला दे सकते हैं, हम आम दे सकते हैं, जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो निगली जा सकें बच्चे के द्वारा, वो देनी चाहिए. शुरुआती उसमें सेब और सेब की फांके नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ये कड़े होते हैं. उसी तरह आप अनार की भी वो नहीं देने हैं आपको. तो ये कुछ सुझाव है हमारी तरफ से.
1: जी जी दिल्ली से हमारे श्रोता हैं संजय जी. संजय जी, क्या है आपका प्रश्न?
4: निश्चित दायरे में एक जगह बना दी जाए सरकार की ओर से, ताकि बच्चों की देख रेख करे काम के दौरान, जब माता पिता काम पर हो, ताकि जो है बहुत अच्छे से बच्चों की देख रेख करे, काम के बाद माता पिता ले जाए, और उस हिसाब से उनका टैक्स वगैरह थोड़ा कटे, या तो काम के हिसाब से जैसा सैलरी होगी उस हिसाब से डिसाइड कर दे पैसों का, ताकि क्योंकि कर्नाटक में अभी कुछ दिनों पहले हुआ था प्राइवेट एक.
1: जी जी जी जी जी आइए, आपने एक अच्छे उदाहरण दिए. और बात दरअसल हो रही है कि जो बच्चे हैं बहुत ही छोटी उम्र के, तो उनका जो पोषण है वो कैसा हो और उनको जो शुरुआती प्रोत्साहन है वो कैसे दिया जाए. दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, आप मिलाइए हमारे स्टूडियो लाइन नंबर, लेकिन पहले जरूर ये 0 और फिर नंबर 2331 0481, या व्हाट्सएप पर आप चाहें तो सवाल आप हमें भेज सकते हैं. अभी मैंने देखा हमारी स्क्रीन पर उभरा था व्हाट्सएप का एक प्रश्न, और व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9289094044. तो इस पर भी आप हमें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं. आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट. जी हाँ, तो हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं हमसे, और व्हाट्सएप पर है ये सवाल हर्षवर्धन जी का. हर्षवर्धन जी पूछना चाहते हैं कि बच्चों को आहार कितने माह बाद देना चाहिए. हालांकि आहार तो मैं समझता हूं डॉक्टर पांडे की उन्हें जन्म के फौरन बाद ही दे
3: हाँ
1: दिया जाता
3: एग्जैक्टली
1: आहार यदि
3: हाँ,
1: कहें, लेकिन
3: माँ का
1: शायद ये
3: दूध
1: पूरक आहार के विषय
3: पूरक,
1: में
3: हाँ, तो
1: पूछ
3: वो
1: रहे हैं.
3: 6 महीने के बाद ही देना चाहिए.
1: जी जी जी तो हर्षवर्धन जी का जो ये प्रश्न था, तो हम आपको ये बता दें कि 6 माह बीत जाने के बाद, यानी कि तब तक वो जो शिशु है वो माता का दूध पीता है, और उसके बाद आप उसे ये जो संपूरक आहार या पूरक आहार भी जिसे कहा जाता है वो दे सकते हैं.
0: मुनीष का इस पे अन्नप्राशन और
1: जी
0: जो हमारी एक पुरानी व्यवस्था थी,
3: परंपरा
0: परंपरा
3: है.
0: थी,
3: जी
0: तो उसमें पहले से हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि अब बच्चा तैयार हो गया है, अब उसमें दांत आने लगे हैं, अब वो चबाने की शक्ति आने लगी है, तो उसे कुछ कुछ ठोस आहार देते था, उसके लिए अन्न प्राशन जैसी कुछ परंपराएं थी।
1: और अन्न प्राशन को दरअसल हमारे यहाँ
0: फेस्टिवल
1: संस्कृति में एक संस्कार में गिना गया है, जैसे विवाह संस्कार है, तो उसी तरह अन्न प्राशन सबसे पहला।
3: और एक इसमें बात और है कि

0: अन्नप्राशन में कई बार हम लोग फील्ड में जो देखते हैं वो कहते हैं चटा देना, बट चटाने के बाद
1: खाना
0: खिलाना भी
1: खिलाना
0: है,
1: होता है
0: तो वो
1: जी
0: एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर्षवर्धन जी ने बात की कि कई बार चटाना इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें बच्चे को खिलाना है
1: खिलाना
0: माँ के दूध के साथ।
1: जी जी जी और दोस्तों आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स लगातार मिल रही हैं, आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और डॉक्टर बिष्ट आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, हालांकि एक श्रोता ने भी पूछा था लेकिन वो थोड़ा उनका अंदाज़ कुछ अलग था इस सवाल को लेकर। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है यानी ये जो मोबाइल है या टेलीविज़न का देखना और बच्चों को भोजन कराना, क्या ये मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
2: देखिए, जैसा जिस परिस्थिति में आजकल के एकल परिवार से बात हुई थी और उनके पास सीमित समय है और कई बार हम जो रिस्पॉन्सिव फीडिंग होती है जिसमें बच्चे के हंगर क्यूज़ से संबंधित खाना खिलाना है और हम अपने समय के अनुसार खिलाना चाहते हैं, तो कई बार हम एक फोर्स फीडिंग करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब इमेजिनरी या ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ बच्चा स्तब्ध हो जाए या फिर जड़ मत हो जाए और टीवी देखता रहे और हम उसके मुंह में कुछ कुछ डालते रहें। तो इस तरह के एक डेज और जॉम्बी टाइप के हालत में हम बच्चे को खिलाते रहते हैं, वो उस पर ना तो उसे खाने का स्वाद पता चलता है ना उसे खाने का टेस्ट टेक्स्चर
0: टेक्सचर
2: पता चल रहा है और वो उस वक्त जो खाने का जो मज़ा लेना है वो नहीं ले पाता। तो वो ऐसे बच्चे बाद में भी जो खाना उनको फूड फैडिज्म भी ज़्यादा होता है और उनको खाना खिलाने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा होती
1: ज्यादा
2: हैं।
1: होती। तो डॉक्टर पांडे, आपसे हमारा एक सवाल था, वो
0: जी
1: चूंकि श्रोता का हमारा कॉल आया तो वो अनुत्तरित रहा, तो यूनिसेफ ने इस
0: जी
1: बारे में क्या कदम उठाए हैं बच्चों का जो कद ना बढ़ना या वजन की जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर?
0: तो दो चीज़ें हैं, एक हम टर्म यूज़ करते हैं टेक्निकल टर्म है स्टंटेड, मतलब बच्चे का हाइट कम रह गई। स्टंटिंग एक महीने 2 महीने में नहीं होती, ये क्रॉनिक कंडीशन है लंबे समय। तो जो फर्स्ट 1000 डेज का जो आपने प्रश्न पूछा था वो कई बार स्टंटिंग को एड्रेस करता है। हम माँ को पहले 2 साल को केटर करें तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा, तो ये तो स्टंटिंग का हो गया। स्टंटिंग को चेंज करना मुश्किल है। हम यहाँ पे सरकार के साथ काम करते हैं, सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। और एक एरिया है, क्योंकि स्टंटिंग लॉन्ग टर्म है तो उसमें आपका विमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, आपका फूड फीडिंग प्रैक्टिसेस, इलनेस, अगर कोई जैसे हमारे काफ़ी उन्होंने प्रश्न पूछे, बीमारी है बच्चे को तो हमने कैसे केयर किया, हमारा जो वातावरण में सफाई स्वच्छता है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो स्टंटिंग को हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट हम डेफिनेटली प्रिवेंटिव बिहेवियर्स को एज यूनिसेफ प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के साथ। एक एरिया है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और अपनी तरफ से योगदान देने का प्रयास किया है, वो है सिवियर वेस्टिंग या फिर सैम बच्चा जो कि बहुत अति कुपोषित है। उसके लिए हम लोग कुछ अस्पतालों के साथ मिलके काम करते हैं, हम ट्रेनिंग्स करते हैं, हम लर्निंग्स फील्ड से लाते हैं, हर स्टेट की अपनी एक यूनिक लर्निंग है और उस लर्निंग को हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं कि क्या उस लर्निंग को हम और स्केल अप कर सकते हैं। और ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कई स्टेट्स ने सैम प्रोग्राम अच्छे से सक्सेसफुली चला रहे हैं सरकार के मार्गदर्शन में, और प्लस हमसे जितना तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो हम अपने लेवल से दे रहे हैं।
1: अच्छा डॉक्टर बिष्ट, क्या ये जो पोषण जो है ये सिर्फ शारीरिक विकास पर ही प्रभाव डालता है या मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है?
2: जैसा मनीष जी आपने शुरुआत में ही कहा, ये पहले 1000 दिन का जो डेवलपमेंट है या आहार है वो उसके क्योंकि दिमाग बनता ही पहले 5 साल के अंदर है। 90 से 95% मैं कहूँगा कि दिमाग जो है वो पहले 5 साल बनता है। जन्म पे बच्चे का जो हेड सरकमफ्रेंस होता है वो तकरीबन 33 होता है और 5 साल पे 50 सेंटीमीटर होता है और उसके बाद जो हमारा अभी एडल्ट है वो 52 से 53 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपसे जो सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही हेड और बढ़ेगा तो बाकी दिमाग का जितना बढ़ना होता है वो पहले 5 साल में ही होता है और सारे कनेक्शंस भी तभी बन रहे होते हैं।
1: जी, यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग एवं नवजात शिशु विभाग के प्रमुख

0: डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। और हम अपने सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें हमेशा की तरह इसी मेल पर भेज सकते हैं। पता है हमारा AIRNSDtalks@gmail.com। कार्यक्रम को आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट है newsonair.nic.in, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पब्लिक स्पीक का ये अंक दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा, आज्ञा लेते हैं आपसे। नमस्कार,
1: नमस्कार,
2: थैंक यू,
1: धन्यवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल उपलब्धि

0: గారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే సర్ ఫిరోజీ. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी. डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है. डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है.
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा. ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है. नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है. श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही.
3: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है. हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े.
1: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया. सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की. इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है. इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे. ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो. मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं. पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है. 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है. राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है. श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं. अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें